0: आयकून सवर जातात, ऐकूया काय खेळणं भितरूच दिल्ली केंद्रावेल्यान प्रसारित जावपी हिंदीतल्यान खबरो.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज. बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है. बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा. आधिकारिक बयान के अनुसार समय सीमा से पहले दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही

0: आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुच्छेद साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मींस तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस की हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर से कहते हैं कि आप बोलिए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच दल में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह में पहली स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है और कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इकाई ने नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चेनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। पहले एक दिन के लिए निर्धारित ये चुनाव अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की पैरा शॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 5वें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: किलोग्राम स्नैच और 111 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। ज्ञानेश्वरी का मुकाबला नाइजीरिया की दिग्गज खिलाड़ी ओनेमो ओमुलोला डिडेही के साथ था, जिन्होंने 206 किलोग्राम का कुल वजन उठाकर रिकॉर्ड स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 22 वर्षीय ज्ञानेश्वरी ने शारीरिक दर्द से जूझते हुए ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने अंतिम और तीसरे प्रयास में 111 किलोग्राम वजन उठाकर पोडियम पर दूसरा स्थान पक्का किया।
1: मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, ये मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है और मेरा मोटिव यही था कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट करूं। मैंने ट्राई किया था कि मैं गोल्ड लेके आऊं इंडिया के लिए, पर आगे कॉम्पिटिटर भी बहुत ज्यादा टफ था, पर मैंने अपना पर्सनल बेस्ट करके सिल्वर मेडल लिया, मैं इसमें बहुत खुश हूं।
0: उनकी इस जीत पर छत्तीसगढ़ वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल राजेश झंगिया जी ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा,
2: बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती है ज्ञानेश्वरी यादव। जो उनके पापा जो हैं दीपक यादव जी, एक प्राइवेट इलेक्ट्रीशियन है, हमारे आदरणीय सर थे, उन्होंने कुछ अपना फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करते करते उनको उसी योगदान देते हुए इस मुकाम पे पहुंचाया। पहले छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किए, फिर नेशनल में, आज वो इंटरनेशनल लेवल पे अगर वो पार्टिसिपेट करे, उसका पूरा श्रेय वहाँ के लोगों का और हमारे बड़ों का आशीर्वाद से वो आज इस रिजल्ट पहुँचाई है सर।
0: वेट लिफ्टिंग में पदकों का सिलसिला यही नहीं रुका। ज्ञानेश्वरी यादव के बाद बारी आई बिंदिया रानी देवी की, जिन्होंने महिलाओं के 58 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। बिंदिया रानी ने कुल 199 किलो वजन उठाकर भारत को इन खेलों का छठा पदक दिलवाया। बिंदिया ने स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 112 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक पक्का कर लिया। इस स्पर्धा में नाइजीरिया की राफियातू ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मणिपुर की रहने वाली बिंदिया रानी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरा पदक जीता है। हालांकि पिछले खेलों की तुलना में इस बार उन्होंने 55 किलोग्राम से बढ़कर 58 किलोग्राम वर्ग में चुनौती पेश की थी, जो कि शारीरिक और तकनीकी रूप से एक बड़ा बदलाव था। देर रात हुए मेंस 79 केजी में भारत के वल्लूरी अजय बाबू ने केवल वजन ही नहीं उठाया, बल्कि पूरे भारतवासियों की आशाओं और जिम्मेदारियों का भार भी अपने कंधों पर संभाल कर रखा। वल्लूरी अजय बाबू ने स्नैच में 149 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 181 किलोग्राम वजन उठाकर कुल 330 केजी वजन के साथ पोडियम पर दूसरा स्थान हासिल किया। अजय बाबू ने गोल्ड मेडल से सिर्फ 1 किलोग्राम वजन से चूक जाने के बावजूद स्नैच में 149 किलोग्राम का गेम्स रिकॉर्ड बनाकर सिल्वर मेडल हासिल किया।
3: स्पर्धाओं की रानी क्वीन ऑफ ऑल स्पोर्ट्स एथलेटिक्स की शुरुआत कल हो गई। भारतीय दल में सबसे ज्यादा ट्रैक और फील्ड के एथलीट ही हैं, 22 पुरुष और 10 महिलाएं, कुल मिलाकर 32 एथलीट। विश्व प्रसिद्ध और भारत की आंख के तारे स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, उनके साथी रोहित यादव, तेजेंद्र पाल सिंह तूर, तेजस्विन शंकर, मुरली श्री शंकर, सर्वेश कुसारे जैसे सितारों से सजा हुआ दल, कल पहला दिन था और बहुत ही शानदार शुरुआत हुई, क्योंकि भारोत्तोलन के सिवा अगर कोई और पदक आया वो आया एथलेटिक्स में। सर्वेश कुसरे ने ऊंची कूद में रजत पदक कमाया। वो तो बस थोड़ा सा किस्मत उनकी खराब थी या किस्मत का फेर था कि वे स्वर्ण पदक नहीं पा सके तकनीकी कारण की वजह से, क्योंकि उन्होंने अधिक अटेम्प्ट लिए थे उस ऊंचाई को पार करने में। बहुत कमाल की ऊंची कूद फांदी कल उन्होंने। पुरुषों की ऊंची कूद में भारत के तीन तीन एथलीट थे, आदर्श राम ज्योति शंकर, सर्वेश कुसरे जिन्होंने इस साल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, 2.30 मीटर तक पार किया है, दुनिया में नंबर 4 के स्थान पर पहुंच चुके हैं, और तीसरे भारतीय थे तेजस्विन शंकर, मशहूर डेकाथलीट और हाई जंपर। लेकिन तेजस्विन फील्ड में नहीं उतरे, रिटायर हो गए क्योंकि उनको चोट लग गई थी। आदर्श और सर्वेश दोनों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी शुरुआत की और 2.1 मीटर की ऊंचाई तक दोनों ही लोग पदक की होड़ में बने हुए थे और पहले 5 स्थानों में थे। सर्वेश तो आगे बढ़ते चले गए और पहुंच गए टॉप 3 के मुकाबले में, और उसमें भी जब किमानी जैक बाहर हो गए इंग्लैंड के, तो वो 2.25 मीटर की जब ऊंचाई पर बार सेट किया गया तो उन्होंने उसको भी तीसरे प्रयास में पार कर लिया। इसके बाद 2.28 सर्वेश और जमैका के रोमेश बेकफोर्ड दोनों ही पार नहीं कर पाए, यानी 2.25 मीटर पर बराबर रहे, लेकिन चूंकि अधिक प्रयास लगाने पड़े थे सर्वेश को, अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने पार किया था, इसके चलते उनको मिला रजत पदक और स्वर्ण पदक गया जमैका के पास। जब दिन की शुरुआत हुई तो जो पहली स्पर्धा थी वही किसी झटके से कम नहीं थे। भारत

0: के गुरिंदर वीर सिंह 100 मीटर की हीट्स में उतरे। 100 मीटर सबसे आकर्षक स्पर्धा होती है जो खेलों के सबसे तेज धावक का निर्णय करती है। एथलीट्स का हुजूम था, 11 हीट्स, 88 प्रतियोगी। हीट नंबर 4 में गुरिंदर, और गुरिंदर भारत के सबसे तेज धावक हैं इस समय। अपनी हीट में गुरिंदर जमैका के रोहन वॉटसन के पीछे रहे, दूसरे स्थान पर आए, लेकिन जब पूरा देखा गया मिलाकर तो वो आए 20वें स्थान पर, जबकि क्वालिफाई किया 17 लोगों ने। फिर आया समय मुरली श्रीशंकर का, जो निसंदेह देश के सबसे अच्छे लॉन्ग जंपर है। उन्होंने उम्मीदें जवान रखी इस देश के खेल प्रेमियों की। अपने पहले प्रयास में ही क्वालिफिकेशन मार्क 8 मीटर पार कर लिया, 8.01 मीटर की दूरी फलांग कर। मुरली अब पदक की दूरी लांघने के लिए उतरेंगे कल रात, और भारत के लिए बहुत बड़ी उम्मीद होंगे।
1: Hopefully I have to redeem my silver medals from last Commonwealth Games.
0: लॉन्ग जंप में ही भारत के एक और एथलीट थे, लोकेश सत्यनाथन। वो बहुत रंग में नहीं दिखे इस सीजन में। अपना सर्वश्रेष्ठ 8.21 मीटर निकालने वाले लोकेश 7.77 मीटर ही कूद सके।
2: I finished fourth in my group and it was a big, two big jumps in the last and it was a scratch. But you know, bigger things is coming on Wednesday, so stay tuned.
0: पुरुषों के 110 मीटर हर्डल्स के सुबह हुए राउंड एक के मुकाबले में हीट वन में तेजस अशोक शिरसे ने क्वालिफाई तो कर लिया था, लेकिन देर रात हुए फाइनल मुकाबले में वो सबसे पीछे स्थान पर आ पाए।
3: एथलेटिक्स के बाद बात करते हैं पैरा एथलेटिक्स की, जहां कल का दिन रहा भारतीय महिला खिलाड़ियों के नाम। एक ही गेम, एक ही कैटेगरी, और वो पल जिसमें दो स्थान आए भारतीय महिलाओं के नाम। जी हां, भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनकर ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की शॉटपुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को इस संस्करण का दूसरा गोल्ड मेडल दिलवा दिया। वहीं इसी स्पर्धा में भारत की शिल्पा ने 7.26 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ पर्सनल बेस्ट थ्रो के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। पैरा एथलेटिक्स में ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के राकेश भाई भट्ट ने पुरुषों की 100 मीटर T38 फाइनल स्पर्धा में 11.82 सेकंड का समय निकालते हुए पांचवा स्थान हासिल किया। वहीं श्रेयांश त्रिवेदी ने 12.22 सेकंड के समय के साथ छठे स्थान पर अपनी दौड़ समाप्त की।
0: इस बार भी मुक्केबाजों ने उम्मीदों को भरपूर हवा दे रखी है। अब तक जितने भी बॉक्सर जितनी बार रिंग में उतरे हैं, 2 बार के सिवाय रेफरी ने हर बार उनका हाथ ऊंचा ही उठाया है, लेकिन एक बार जब ऊंचा नहीं उठा वो कल भी था। कल 4 भार वर्गों में राउंड ऑफ 16 के मुकाबले थे, और 3 भारतीय मुक्केबाज अपने मुकाबले जीतकर पदक पक्का करने से बस एक बाउट दूर ही रह गए हैं। सबसे पहले रेड कॉर्नर में सचिन सिवाच ने तीसरे राउंड में बेहतरीन मुक्केबाजी कर अंकों के आधार पर 4-1 से इंग्लैंड के विलियम हेविट को परास्त किया।
4: The winner in the red corner, Sachin Sivac.
5: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। अपने अपोनेंट्स के सारे उनके वीडियो देख रहे हैं, गलतियों पे काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छी तैयारी चली हुई है। गोल्ड लिया ने,
0: और इसके बाद 80 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में अंकुश ने जबरदस्त पंचेस और जैप्स के साथ साथ बेहतरीन रक्षण करते हुए 5-0 के एक मत से फाइट अपने पक्ष में कर ली।
4: यूनानिमस डिसीजन, द विनर इन द रेड कॉर्नर फ्रॉम इंडिया।
0: दिन की एकमात्र भारतीय महिला मुक्केबाज साक्षी भला क्यों पीछे रहती महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में। पूरी चपलता के साथ रिंग को कवर करते हुए मुक्कों की बौछार कर दी उन्होंने, और बोत्सवाना की लियाबो मुडुकांडे को उनको बिल्कुल बेबस कर दिया। 5-0 से सर्वसम्मति के साथ निर्णय उनके पक्ष में रहा, और साक्षी अब पदक की साक्षी बनने के बहुत नजदीक पहुंच गई हैं।
6: मेरा काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और मैं उम्मीद करती हूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इंडिया के लिए एक गोल्ड मेडल जीत।
0: दिन की अंतिम बाउट थी 70 किलोग्राम भार वर्ग में सुमित की नॉर्दर्न आयरलैंड के जॉन मैकेलेन के साथ, और सुमित ये मुकाबला अंकों के आधार पर हार बैठे।
3: चलिए अब आपको लिए चलते हैं फुर्ती और फ्लेक्सिबिलिटी के खेल जिम्नास्टिक में, जहां आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में महिला वॉल्ट फाइनल में प्रतिष्ठा सामंता 7वें स्थान पर रही।
0: तैराकी में राष्ट्रमंडल खेलों में स्पर्धा खासी तगड़ी होती है। ऑस्ट्रेलिया तो हावी रहता ही है, लेकिन कनाडा, इंग्लैंड आदि भी बहुत कड़ी चुनौती पेश करते हैं। भारत के पुराने सीजन्ड पुरोधा साजन प्रकाश कल तरणताल में उतरे। 200 मीटर

0: बटरफ्लाई में उन्होंने क्वालिफाई किया और तीनों हीट्स में कुल मिलाकर वे छठे स्थान पर रहे और फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल बहुत देर रात 2 बजे हुआ। वहां पर साजन प्रकाश अपनी ख्यात के अनुरूप प्रदर्शन करने में असफल रहे और पदक की होड़ से बाहर हो गए।
1: आइए अब जाने पैरा स्विमिंग में भारत का हाल। देर रात हुए फाइनल में स्वातिक पाटिल ने 5वां स्थान हासिल किया। स्वातिक ने फाइनल में 1:15.82 का समय निकाला। इस कैटेगरी में स्वर्ण ऑस्ट्रेलिया, रजत न्यूजीलैंड और ब्रॉन्ज भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की झोली में गया। कर्नाटक के रहने वाले स्वातिक ने इस बड़े मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बेहद कड़ा मुकाबला पेश किया। हालांकि वो पदक तालिका में स्थान बनाने से चूक गए, लेकिन 5वें स्थान पर फिनिश उनके खेल के कौशल को दर्शा गया।
2: Involves India's Putul Sonowal's Commonwealth Game 2026 campaign comes to an end after a loss against Kenya's Anwar Hamada. Despite a determined effort, Putul went down 0.5 to 1.5. He trailed 6-8 in his first set, and in second set he regained his composure and bounced back with good throws and leveled second set 5-5. But it was not too little and too late, and he missed out on a place in the semi-finals. The Indian bowler finished with 2 wins and 3 losses, defeating Canada and Falkland Islands while losing to Malaysia, Malta and Kenya during his campaign. He finished 5th in his section and could not qualify for the semi-finals.
1: अब बात आती है 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल की, जहां भारतीय महिला टीम रीना, लक्ष्मी, मीनाक्षी, ऋतु पूल बी के 30वें मैच में नाइजीरिया से 6-7 से हारकर बाहर हो गई।
0: और आइए अब एक संक्षिप्त निगाह डालते हैं आज होने वाली स्पर्धाओं में। वेटलिफ्टिंग, जिसमें अब तक बहुत पदक आए हैं, उसमें 63 किलोग्राम भार वर्ग में निरुपमा सिराम और 69 किलोग्राम में हरजिंदर कौर अपने बाजुओं का दम आजमाएंगी। एथलेटिक्स में 400 मीटर की स्पर्धा है पुरुषों की। महिलाओं में ऊंची कूद में पूजा होंगी, 10,000 मीटर में कुलवीर सिंह होंगे। बॉक्सिंग में 54 किलोग्राम भार वर्ग में प्रीति, 60 किलो में प्रिया, 65 किलोग्राम में परवीन और पुरुषों में जादूमणि सिंह, 90 किलोग्राम भार वर्ग में कपिल पोखरिया, ये सब आजमाएंगे अपने मुक्कों की ताकत।
1: राष्ट्रमंडल खेलों की इस अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे इसी समय पर। तब तक के लिए संपादक स्वाति कपूर, प्रस्तुतकर्ता शहनवाज खान के साथ मैं कविता शर्मा अपने सहयोगी अनुपम पाठक के साथ लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।
3: The Commonwealth Games.

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण

0: पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम वन की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम वन भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम वन की सफलता की सराहना की थी।
1: विक्रम वन इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
0: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
2: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन मामलों में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य की किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान

0: कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्लेबुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे अब 8 से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्र

0: मंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
1: हम बहुत खुश है हमारे देश के लिए मेडल लाके, हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाके।
0: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है, दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा, प्रत्यक्षित चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपने साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एक ऐसे दिन गाओ प्यासा स्वादिक ताले आंदोने चिलियो कोरिया पिटा फर्नांडिस आनी आओ एक कैसेटिंतली गितांग ओडपी आनी गावपी लॅविस ऑलिव्हेरा म्युझिक बाय वन एंड ओनली

0: your devices, stealing your leaked passwords, and damaging you is becoming very common. So keep changing your passwords. Always have a multi-factor authentication on all your accounts. Use passkey instead of passwords and protect your net banking and banking applications. Stay safe and stay cyber surakshit. Thank you.
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत सुमार 60 कोटी लोक 5 लाख रुपया मेरेन फुकट उपचाराचे हकदार जाल्यात. आता मेरेन 12 कोटी परस चोड मुफत उपचार केल्यात, जाका लागून गरीब कुटुंबाच्या उपचार खर्चांत सुमार 2 लाख कोटी रुपयाची बचत जाल्या. आयजूच आयुष्मान ऍप डाउनलोड करून आयुष्मान कार्ड तयार करात. अधिक माहिती खातीर 1455 नंबरावर कॉल करात.
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए.
2: पक्का.
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। गठबंधन की पूर्ण एकता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से संसद सत्र के दौरान ये बैठकें पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती हैं। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया था। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वो 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। असम के गृह और राजनीतिक विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट पवन चंदना और नागा भारत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम एक की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम एक भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम की सराहना की थी।
1: विक्रम 1, इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल में नव विकसित निषादपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम इसका उद्घाटन करेंगे। मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव भी अब निषादपुरा रेलवे स्टेशन पर होगा। इन परियोजनाओं से उत्तर भारत भोपाल की रेल और सड़क संपर्क और मजबूत होगा। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.8

एक मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। सर्वेश कुशारी ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ और कांस्य पदक जीतने पर शिल्पा शायला को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने रजत पदक जीतने पर सर्वेश अनिल कुशारे और पुरुषों के 79 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में रजत पदक जीतने पर वल्लूरी अजय बाबू को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के 58 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतने पर विंध्यारानी देवी सोरुखैबम को बधाई दी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वरद तारी हांच्या आवाजातले हे गीत आशिल्ले अंतरा भिडे हांचे.
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है. कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था. कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है. पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना. मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा.
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों ने भी बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन विधेयक पर होने वाली चर्चा में भाग लेंगे। भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने सभी की सुरक्षा की भी कामना की। पाकिस्तान के कब्जे वाले

जम्मू कश्मीर पीओजेके में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी जेएएसी द्वारा आयोजित मार्च के दौरान 20 लोगों के मारे जाने और कई अन्य के घायल होने की खबर है। खबरों के अनुसार कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। जेएएसी ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है और आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और अत्यधिक बल का प्रयोग किया। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के,
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कामा वेली दगदग, ट्रैफिक इतलो बोवाळ, घरा पावपाचो हुस्को, तुमका सतेता असत जाल्यार डोंट वरी माय फ्रेंड। पुराय दिसाची थकाय पयस करपाक, तुमची आमची सांज फुलोवपाक आकाशवाणी पणजी केंद्राचो FM रेनबो चॅनल घेवन येता रेनबो सांज। दर दिसा सांज वेळा 5:15 ते 7:05 मजगती रेनबो सांज, फकत 105.4 MHz रेनबो सांज।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं,
2: ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास का होना जरूरी है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार को भेजने के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके

0: संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
1: रोहान से छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू।
0: और राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद ने लिखा है, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
1: ग्राम पुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम।

0: और गाय भैंस के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। आपने आगे लिखा है,
1: सुंदर प्यारा गीत टिम टिम तारा जादुई पिटारा हमारे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद आता है। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस गीत को बार बार बजाया करें।
0: इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ लघु कथाएं जिनसे निश्चित रूप से हमें प्रेरणा मिलेगी
1: जी।
0: इस क्रम में श्रोताओं आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग जो उनकी मित व्ययिता और संसाधनों के सदुपयोग और अपव्यय न करने के स्वभाव को दर्शाता है।
1: ये उन दिनों की बात है जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। गांधी जी के बहुत सारे प्रशंसक थे तो आलोचक भी बहुत थे
0: जी। उन्हें पसंद करने वाले थे तो नापसंद करने वाले भी थे।
1: बिल्कुल।
0: एक बार की बात है किसी ने उन्हें कई पन्नों का एक लंबा पत्र लिखा जिसमें उनकी जमकर निंदा की गई।
1: गांधी जी ने उसे पढ़ने के बाद कागज में लगी धातु की पिन सावधानी से निकालकर अलग रख ली ताकि उसे दोबारा उपयोग किया जा सके और पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।
0: जब उनके निजी सचिव महादेव देसाई जी ने पूछा कि इतनी छोटी सी पिन को संभाल कर रखने की क्या आवश्यकता है तो गांधी जी ने समझाया कि देश के संसाधन अमूल्य हैं।
1: जी।
0: यदि हर व्यक्ति छोटी छोटी वस्तुओं का भी सोच समझकर उपयोग करे और उन्हें व्यर्थ न गवाए तो बहुत बड़ी बचत हो सकती है।
1: श्रोताओं इस प्रसंग से यही प्रेरणा मिलती है कि छोटी छोटी चीजों का भी हमें सम्मान करना चाहिए और अपव्यय या फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए।
0: एक और बात समझ में आती है श्रोताओं कि संसाधनों का पुनः उपयोग या रीयूज करना चाहिए। सादगी और मितव्ययिता जीवन का महत्वपूर्ण गुण है।
1: जी श्रोताओं एक और बात, गांधी जी दिखावे और भोजन की बर्बादी के भी सख्त खिलाफ थे। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भोजन भी उतना ही लें जितना खाया जा सके।
0: आज के युग में श्रोताओं सभी साधनों और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है
1: जी।
0: गांधी जी का ये प्रेरक प्रसंग सचमुच एक उत्तम उदाहरण है।
1: श्रोताओं आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था मितव्ययिता। अब इसका अर्थ जान लेते हैं
0: जी। श्रोताओं मितव्ययिता इस शब्द का अर्थ है जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करना और अनावश्यक खर्च से बचना ही मितव्ययिता कहलाती है।
1: जैसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे बिजली और पानी का अनावश्यक उपयोग न करना, केवल जरूरत की वस्तुएं ही खरीदना, भोजन की बर्बादी न करना और समय का सदुपयोग करना।
0: जी तो श्रोताओं अभी आपने सुना गांधी जी के जीवन का ये प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: गांधी जी के निजी सचिव का क्या नाम था।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: और आपको बता दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं, वहां हमारी पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण आप सुन सकते हैं।
0: और यदि NCERT की पाठ्य पुस्तकों का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। निर्देशों का पालन करें और पुस्तक को डाउनलोड करें।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
0: और अब बारी है श्रोताओं हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलाते चलो।
1: NCERT की 6ठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से उद्धृत इस कार्यक्रम को गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों को प्रेरित करती है कि वे प्रेम और स्नेह का दीप जलाते रहें और निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति जलाते हुए समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते रहें।

0: और श्रोताओं अब सुनते हैं कार्यक्रम लता क्यों नहीं बोलती।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि वे संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं जिनके कारण बच्चों की सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है।

0: हाँ तो बच्चों बताओ, सूर्य किस दिशा से उगता है?
1: पूरब से।
0: शाबाश। और किस दिशा में डूबता है?
1: पश्चिम में।
0: अरे लता, तुम क्यों नहीं बोल रही?
2: दीदी दीदी, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है।
0: क्यों लता, तुम्हारी क्या समझ में नहीं आ रहा मैं जो पढ़ा रही हूँ?
3: दीदी, इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता।
4: दीदी, ये तो एकदम बुद्धू है।
2: दीदी दीदी, ये तो हमेशा चुप बैठी रहती है।
0: चुप चुप हो जाओ तुम सब, मैं लता से पूछ रही हूँ, लता ही जवाब देगी। हाँ लता, बताओ बेटा, तुम्हें जो मैं पढ़ाती हूँ समझ में नहीं आता क्या?
3: दीदी वो।
0: हाँ बोलो।
3: दीदी।
0: बोलो लता, क्या बात है?
5: नई नई आई अध्यापिका उमा देवी को समझ में नहीं आ पा रहा था कि लता क्यों साधारण से साधारण सवाल का जवाब नहीं देती। कक्षा के बच्चे कहते थे कि लता बुद्धू है, पर अगर वो इतनी बुद्धू होती तो तीसरी कक्षा में कैसे आ पाती? उन्होंने लता के व्यवहार की पहेली हल करने के लिए कमर कस ही ली। उन्होंने गौर किया कि लता आधी छुट्टी में भी अकेली ही रहती है, बाकी बच्चों से घुलती मिलती नहीं है, बच्चे भी उसे अपने साथ खिलाते नहीं हैं, बल्कि कई चंचल बच्चे उसे काफी तंग भी करते हैं। दो ही हफ्तों में उमा देवी की समझ में अच्छी तरह आ गया कि लता कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा है। वो बोलती भले ही ना हो, पर लिखित परीक्षाओं में उसके अंक बाकी छात्रों से काफी अच्छे होते हैं। तो क्या ये प्रतिभाशालिनी छात्रा सिर्फ बहुत कम बोलने के कारण हमेशा के लिए सबकी उपेक्षा का शिकार बन जाएगी? उमा जी के गले से ये बात उतर नहीं पा रही थी। उन्होंने लता के माता पिता से मिलने का निश्चय किया।

0: नमस्ते शिखा।
1: अरे दीदी जी आप
2: आइए आइए।
1: नमस्ते बहन जी।
2: नमस्ते, यहाँ बैठिए
1: जी।
2: यहाँ आज कैसे गरीबों के घर आपने।
1: अरे बहन जी कैसी बात कहती हैं आप, मैं तो कई दिन से सोच रही थी, आज निकाल पाई समय।
2: ठीक कहती हैं आप, काम में से समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है और आपको तो पढ़ाना भी होता है, दोहरी जिम्मेदारी।
1: हाँ ये तो है।
2: अरे लो लता के बापू भी आ गए।
3: राम राम दादा।
4: हाँ,
3: कैसे हैं आप।
4: राम राम। अरे आप यहाँ। लता, ओ लता, बहन जी के लिए शरबत ला। इतनी बड़ी ढींगड़ी हो गई पर अकल रहती भर नहीं। और तुम लता की माँ, तुम्हें भी बातें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती।
3: नहीं नहीं दादा, अभी तो आकर बैठी हूँ मैं।
4: अरे बहन जी ये माँ बेटी है ही ऐसी, कतई पागल।
3: ऐसा मत कहिए दादा, लता तो बहुत अच्छी बच्ची है।
4: अच्छी, और ये छोरी मुँह से तो बोल नहीं फूटता इसके।
3: अरे लता आओ बेटा, आओ आओ, आओ बैठो, यहाँ यहाँ बैठो मेरे पास।
5: जी दी दी।
4: लता जाओ यहाँ से, बड़े लोगों में बैठने का तेरा कोई काम नहीं। बहन जी आप इसकी माँ से बतियाओ, मैं जरा बाहर का काम देखूं। हा?
3: जी।
6: लता के घर जाकर उमा देवी की समझ में आया कि लता इतनी चुप चुप क्यों रहती है। उसके पिता का अपमानजनक व्यवहार किसी को भी गुमसुम बनाने के लिए काफी है। लता की दबी सहमी माँ भी उसे किसी किस्म का आत्मविश्वास नहीं दे पा रही। फिर भी लता को रहना तो इन्हीं माता पिता के साथ है। उमा जी ने तय किया कि इन्हीं माता पिता की मदद से वो लता की समस्या सुलझाएंगी। शुरुआत उन्होंने खुद की।
3: अच्छा बच्चों ये बताओ कि पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा तेज और दूर तक कौन दौड़ता है।
7: दीदी लता, दीदी लता।
3: लता
8: जी दीदी।
3: क्या ये लता।
8: जी दीदी।
3: अरे नहीं।
8: हाँ दीदी, लता को कोई नहीं पकड़ पाता।
3: अच्छा।
8: एक बार इसका बछड़ा खेतों में भाग गया था।
3: हुँ?
8: हम सब उसे पकड़ने दौड़े पर बछड़ा दौड़ता गया दौड़ता गया।
3: हुँ?
8: सारे थक गए पर लता बछड़े को पकड़ कर ही लाई।
3: अच्छा
8: जी दीदी।
3: लता ये सच है क्या। अरे वाह लता, तुम तो बड़ी होशियार हो।

0: महीने भर बाद स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं में दौड़ के 4 इनाम लता को मिले। उमा जी ने स्कूल के सभी बच्चों के माता पिता को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित किया था। भारी सभा में अपनी बेटी को 4-4 इनाम मिलने पर लता के पिता ने अपने को गौरवशाली महसूस किया।
1: अरे वारी पगली छोरी, दौड़ में तो खूब नंबर मारा तूने।
2: बापू मुझे पगली छोरी क्यों कहते हो, मैं पगली नहीं हूँ।
1: देखा इनाम पाकर कैसी जबान लड़ा रही है। अच्छा चल, तू पगली छोरी नहीं है ठीक।
3: नमस्ते दादा।
1: नमस्ते नमस्ते।
3: क्या बातें हो रही है बेटी से।
1: अरे आपने तो बहन जी कमाल कर दिया। मैंने तो कभी देखा ही नहीं था कि जरा जरा से बच्चे ऐसे बढ़िया खेल कूद दिखाए।
3: हाँ दादा, और खासकर लता।
1: लता ने तो बहन जी बहुत ही कमाल किया।
3: और दादा आप इसकी तरफ जरा सा ध्यान देना तो ये और भी कमाल कर सकती है।
1: वाह बहन जी, आप ही क्या कहती हैं, इसमें हमने क्या ध्यान देना है, आपने ध्यान देना है वो आप दे ही रही हैं।
3: देखिए दादा, मेरे पास लड़की रहती है करीब 4 घंटे और आपके पास रहती है 20 घंटे, है कि नहीं।
1: हाँ बिल्कुल।
3: और फिर आप उसे जितना प्यार करते हैं उतना कोई और चाहे मैं ही क्यों ना हूँ कर सकता है भला।
1: नहीं जी नहीं।
3: तो दादा अगर मेरी जरा सी मेहनत से लड़की इतना अच्छा नतीजा दिखा सकती है तो आपके सहारा देने से कितना कमाल हो जाएगा, सोचिए जरा।
1: पर बहन जी मैं क्या करूं, देखो इसकी किताबें वर्दी।
3: वो सब तो ठीक है दादा, उसमें आप कोई कमी नहीं करते,

0: पर आप इसे हर वक्त डांटना बंद कर दें।
1: वो तो बहन जी
0: देखिए दादा, आप हैं एक माली के समान और ये है एक फूल के समान। आप ही उसे कोंचते रहेंगे तो क्या नतीजा होगा?
1: वो
0: अब देखिए ना, इतनी होशियार लड़की और मामूली बात करने में भी कितना घबराती है।
1: पर उसका इसकी पढ़ाई से क्या लेना देना है?
0: दादा, कम बोलने की वजह से काफी लोग इसे बुद्धू समझते हैं।
1: है?
0: लता रहती भी काफी सहमी सी है, बच्चों के साथ घुलमिल भी नहीं पाती।
1: हो
0: धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से भी उचटने लगेगा और हो सकता है कल को घर गृहस्थी में भी।
1: बहन जी, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था।
0: पर अब तो आपको मालूम हो गया ना दादा।
1: जी
0: बस आप इसे बात बात पर डांटना बंद कर दें।
1: हाँ हाँ बहन जी, मैं कोई इसका दुश्मन थोड़े ही हूँ, बाप हूँ बाप।
0: वाह दादा, लाख टके की बात कही आपने।
2: उमा देवी ने लता के आत्मविश्वास को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू तो खुद ही की, पर उसे बनाए रखने के लिए उन्होंने लता के पिता का सक्रिय सहयोग मांगा। उमा जी की लगन भरी पहल ने ही लता के पिता को प्रेरित किया। आप भी माता पिता का सक्रिय सहयोग मांगिए। माता पिताओं से मिलने के बहुत से अवसर आपको मिलते हैं, स्कूल के उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम या फिर घर पर मुलाकात। माता पिता का पूरा और सक्रिय सहयोग आपका और आपके विद्यार्थी का अधिकार है। इसे पाने के लिए कोई प्रयास बाकी न रखें।
3: अच्छा सुन लता, शाम को मेरे घर आएगी?
4: हाँ हाँ,
3: पता है मेरे मामा ने मेरे लिए छोटी सी गुड़िया भेजी है।
4: अच्छा,
3: उसके सचमुच के बाल हैं।
4: ओहो,
3: और एक कंघी भी है।
4: अरे सच? फिर तो मैं स्कूल का काम खत्म करके आऊंगी।
3: ठीक है।
5: अच्छा लता, वो मैं भी आ जाऊंगा स्कूल का काम लेकर तेरे घर। वो मुझसे ना भाई गणित के सवाल ही नहीं होते, मैं क्या करूँ।
4: ठीक है आ जाना।
5: अच्छा,
4: मैं भी आ जाऊँ लता?
3: हाँ हाँ,
5: मैं भी आ जाऊँ लता?
4: हाँ हाँ, तुम भी आ जाना।
2: आखिर उमा जी की मेहनत और लता के माता पिता का सहयोग रंग लाया। लता अब बदल चुकी है, आत्मविश्वास से भरपूर, सहज, साथियों की संगत और अपने बचपन का आनंद लेती है। ये चमत्कार आपके यहां भी संभव है।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
2: जगबंधु,
1: कुसुमलता
2: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार, नमस्कार। उमंग।

आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए किसी भी डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करता है। इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान, 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान

किया गया है कि अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पद के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उल्लेख किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में समावेशी विकास के साथ साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आत्मगौरव की भावना पुनर्जीवित हुई है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ संभाग में परभणी मुदखेड़ 99 खंड पर विद्युत कर्षण प्रणाली के उन्नयन के लिए 163 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना में 164 किलोमीटर ट्रैक पर मौजूद 25 किलोवाट विद्युत कर्षण प्रणाली को अधिक उन्नत 50 किलोवाट प्रणाली में परिवर्तित करना शामिल है। साथ ही बढ़ी हुई विद्युत मांग को पूरा करने के लिए उन्नत विद्युत आपूर्ति अवसंरचना भी शामिल है। राष्ट्रमंडल खेलों में आज 5 भारतीय मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। महिला वर्ग में प्रीति पवार, प्रिया घनघस और परवीन हुड्डा प्रतिस्पर्धा करेंगी। वहीं पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और कपिल पोखरिया अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीत आम्ही ऐकले विदुषी गिरिजा देवी यांचे गायन. आपल्या गायनात त्यांनी नुकतंच सादर केलं राग गजडी. इथल्यान ही हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ हंगा सोंपता. बरोबर सवरांचेर हिंदीतल्यान खबरो आम्ही आमच्या दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतात.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय लोकसभा में चर्चा हो रही है. ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है. विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं. मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है. अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए. अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है. उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है. कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था. इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है. राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई. सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है. न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हाल के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया. शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य असहनीय बोझ न डालें. न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए. भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है. नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात कही.
2: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है. इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है. जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है. वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है.

भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले मई में विकास दर को थोड़ा कम करके 5% बताया गया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि जून महीने में सभी चार बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 70 अंक गिरकर 76,766 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 11 अंक कम होकर 23,985 पर आ गया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। चीन के हांगझोउ में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गिलने सा। एंजॉय।
1: जीना तेरी गली में फिल्म का तेरी आवाज अनुराधा पौडवाला ने मोहम्मद अजीज हंसो।

0: जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
1: You must compliment Prime Minister Modi and this government.
2: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
1: To ensure speedy justice.
0: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
3: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
4: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनाव को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षक क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। भाजपा की बांसुरी स्वराज ने विधेयक को परीक्षा माफिया पर प्रभावी कार्रवाई की दिशा में अहम कदम बताया। चर्चा में बीजेपी के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय

0: ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने साइबर सुरक्षा में सेंध लगने की मीडिया रिपोर्टों को गलत और अपुष्ट बताते हुए खारिज कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संबंधित एजेंसियों ने इस मामले की गहन जांच की है। मंत्रालय ने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर साझा किया जा रहा अधिकांश डेटा गोपनीय नहीं है। कुछ दस्तावेज वर्ष 2020 से 2022 के दौरान हुई पुराने डेटा लीक से जुड़े हैं। मंत्रालय के अनुसार कुछ लोगों ने पुराने दस्तावेजों में फेरबदल कर उन्हें नया और गोपनीय बताने की कोशिश की है। जांच में यह भी सामने आया कि ये दस्तावेज पुराने हैं, इनमें कई बार संशोधन हो चुके हैं और इनका वर्तमान संचालन से कोई संबंध नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलाबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। अनुभवी खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी पणजी 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर तुम्ही आयकतात FM रेनबोचे प्रसारण। तशेंच न्यूज ऑन एअर ह्या एपावरवी डिजिटल मोडाचेर तुम्ही आयकतात FM रेनबो। आता रातची 12:05 जावन गेल्ली आसात। आयच्या दिसापुरते आमचे प्रसारण आता बंद जाता। FM रेनबोच्या प्रसारणांत परती तुमची आमची भेट फाल्यां सकाळी 6 जातली। आयचे रातीपुरतो आता आमकां निरोप दियात। शुभरात्री। जय हिंद।